0: Call 647-504-1557.
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
3: टेक स्पिरिट, हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही। टेक स्पिरिट 905-621-4100। तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है, तुसी अगर घरे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करवाना, वेरी प्रोफेशनल टीम। टेक स्पिरिट 905-621-4100, 905-621-4100 ते फोन जरूर करो।

0: जिया मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूं।
1: नहीं यार
0: नजर जिया I want to tell you something.
2: Hi.
0: Hi.
2: I want to tell you something. Me too.
0: तुम बोलो.
2: I'm getting married. In 2 days. लड़का आ रहा है. बहुत अच्छा लड़का है. I know सब कुछ बहुत जल्दी होगा. कहाँ खो गए?
0: नहीं यार कहीं नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस यार
2: थैंक्स तो तुम आ रहे हो ना
0: मुझे जरूरी काम है यार मैं नहीं आ पाऊंगा
2: मुझे ही वांट यू टू कम
0: यार आई रियली विश आई कुड
2: तुम्हें मेरी कसम चाहे

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल सैनिस प्रोग्रामस मंसु तो है माय बरुत इस्तकबाल मर्ज कशीर छ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हुंद अख सूब यत सूबे कश्मीर वनान छ तो दोयम सूब ग सूबे जम्मू कशीर छ पहाड़ो ये देबसिते खन मजरट मज त तवे छ वादी यानी घाटी ते वनान वादी कश्मीर छ जमीन पेठ संत स्वर्ग बसित तो वादी गुलपोश तिशस वनान छठे पोपर छ पोश वनन मत करान तो वीर केम छक पादन मीठ दिवान बोने शहजार छ पहलन कुमलन कहो मेहनत कशन थके सेनत गुम शहलावान तो चक शेलत पवान दोहले पोश बागन मज गुलो बुलबुल आख किस लोल बगरान तो कुटले लोल रेव करान तो रोतले जोन गाशस मज कोहन पेट पहलन हंस मोरली कनन कछान कशीर हंस मौसी के छु अ खास मुकाम हासिल अतिक साजंदर ये ले साज वायान छ तो बासान छ से यंदराज ने दरबार एक साजंदर छ योर वेतमित ते अप्सराय छ माज कशीर हुंद दिल रंजरावान बच नगम छ शब्दान तो लोक छ वलसन असीवान जैन ते जैन छ रेव करान या वुन छु सो मारान तो लोल एक नगम गेवान नचान ते नचनावान साजंदर छ नोट तुम्बकनर रबाब संतूर सारंग ते हारमोनियम वायान ते कृष्ण गणमातन हिंदन बर्तन पर छु रक्स सप्तान ये ले सोत बादाम वर छ लगान ते रेत काले बागन मंस मल छ लगान अच्छ छकर ते रोफनान ते ये गौ फोक म्यूजिक उक कशुरा सूफियान मौसिकी ते छे कर्षन हंस प्रजनत पदकड़ान स्वर्ण वर्ल छ लुक बर्तन हुंद रंग रथ खारान तो डोल बजावान बजावान छ बांड पत्थर हावान मसलन दर्ज पत्थर गोसैन पत्थर वगर वगर हिमाल नागरहित अकनंदन हिवन लुक कथन पेट मबनी पत्थर छ बांड पत्थर रूपस मस्ते पेश करने वान तो लुकन लुक कथन हंस अहमियत बयान वान करन ये सोरे छ कशुर मिरास युस थोत

तुंदा परती स्वागत है डोगरी रेडियो च। मैं अज ती आज नेहा शर्मा डोगरी दी धी। ते मैं जेड़ी तुसें अज सुनानी है कि मेरे डुग्गर प्रदेश का नाम जम्मू कियां पिया। ते सुनिया ये बड़ी ही पुरानी दंत कथाएं च एक कथा है जो कुछ किताबें च भी लिखित है ते असीं अपने बड़े बुजुर्गों को ही सुनी दी है। बड़ी पुरानी गल है, एक राजा होंदे हे, वो शिकार करने आस्ते अपने मंत्रियों कन्ने निकली गए ते टुरदे टुरदे वो बड़े उठी गए ते उन्हें बसा करने आस्ते अपने मंत्री इशारा दिता भाई कोई शैल नहीं जगह तुप्पो ते मंत्रियें हुक्म की तामील की ते उन्दे आस्ते एक जगह तुप्पी दी गई ते पर उत्थे दा नज़ारा ते बड़ा ही चमत्कारी दृश्य हा। राजा और बड़े रान परेशान होए उत्थे के हा एक नहर है निक्की हारी जेदे पर शेर ते बकरी दोनों कट्ठे पानी पिया करते हैं ते राजा और ते बड़े रान परेशान होए उन्हें आखे ते भाई कोई देवी शक्ति लगती है क्योंकि इत्थे ते प्रकृति दे नियम दा पुट के काम चला दा है। तुसीं पता सारे कि प्रकृति दा नियम है शेर बकरी दा शिकार करदा है ते बकरी अपनी जान बचांदी है उहदे कोला नठदी है पर इत्थे दे किश उलट के कल ही ना ते कोई डर भावना ही ना कोई इतराह ते ना के कोई द्वेष भावना ही ते दोनों मिली जुलिए इयां के पानी पिया दे कोई कुसी तरह दा कोई डर तरह नहीं लभदा दा ते राजा और बड़े गे हैरान होए उन्हें अपने मंत्री आख्या भाई ये ते कोई मैं देवी शक्ति लगती है ये थार कोई साधारण थार नहीं लभदी है इत्थे पक्का कोई ना कोई चमत्कार है कोई ना कोई उएं दी गल है ते मैं सोचा ना कि इस जगह ही मैं और अगे बसावां ते इत्थे मैं कुछ दिन रोवां मैं इत्थे अगे दा पता करां ये की चीज़ है इत्थे इस चमत्कार दे पिछे दी कहानी की है मैं ये पता जरूर करनी है। तुस सुनो अगला गीत ते मैं सुनानी अगे दी कहानी इस गीत दे बाद।

बड़ा के शैल बड़ा के मिठा गीत सुनिए नंद गया आप त्यास गल करा दे है जम्मू प्रदेश दी ते मैं आ जंदी आरजे नेहा शर्मा ते जदों राजे ने दिखिया ते उन्हें फिर उस जगह ही बसाने दा निर्णय ले लेता। उस राजे दा नाम है राजा जी जम्बू लोचन ते उन्हें राजे दे नाम पर इस जुग्गर प्रदेश दा नाम पिया जम्बू, पर उन सरल भाषा च जम्बू बोलते बोलते जम्मू के हुई गया। ते कनेही लगी तुसी कहानी? ये जिहड़ी कहानी है एक दंत कथाएं च एक है जिहड़े साढ़े वड्डे बजुर्ग असीं सुनांदे ने, असीं सुनी दी है अपने जम्मू प्रदेश के नाँ के पिछे का महत्व। ते इसी कहानी का प्रभावित होइए मैं ये अपनी कविता भी लिखी ही। सच च गे इसी मंदरे का थां रखते हैं, इतने बड़ी बड़ी चमत्कारी जगहां ने, उनके बड़े बड़े महत्व ने, ते बड़े ही इतने लोग जड़े ने बड़े मिलनसार हैं, बड़े मेल भाव करने रोंदे ने। ये जिहड़ा शेर ते बकरी का उदाहरण है वह अज भी कुदे ना कुदे मेरे डुग्गर प्रदेश विद्यमान है। लोग बिना द्वेष भाव के रोंदे ने, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते ने, बड़े ही प्रेम करने रोंदे ने। ते मैं प्रार्थना करनी हां ये प्रेम सदा इन्हें सारे लोगों च बने दागे रहे। ते तुस सुनो आज दे एपिसोड दा अगला गीत।

0: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
1: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
0: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
1: 647-835-5294-647-835-5294
2: नाले चोपड़ियां नाले दो दो
3: आहो जी मेनू भी पता नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना यानी दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी दाला मसाले पिकल्स चौल चाय पत्ती फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
2: डेयरी प्रोडक्ट्स स्नैक्स फ्रेश चिकन बीफ गोट मीट सब कुछ मिलूगा इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे चना भटूरा वेज थाली वेज बिरयानी बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो
3: एक बार आओगे ते बार बार आओगे
2: अनबीटेबल प्राइसेस सेल ऑल टाइम दाना मंडी 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley.
3: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करनगे. Mortgage the King, Girish Sharma.
6: Residential, commercial, refinancing, debt consolidation, second, third mortgages, private funds.
5: सब ले याद रखो Girish Sharma. Pre-approval ही नहीं, closing तक देंगे पूरा साथ. Dealing with all banks.
6: Call 647-606-8110.
5: और visit sharmamortgages.com.
7: ओ इस साल ता इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी. कार ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्ता ने सारा बजट हिलाता.
8: ओ जी अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं. ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज.
7: होम ऑटो कमर्शियल ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानो एट 416-618-2761 416-618-2761
9: पाजी आज घरे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ घरे नहीं बन पाउना.
10: Hi guys, enjoy karo Tandoori Boys. Veg, non-veg, swadle tandoori khane le pahuncho Tandoori Boys.
11: Sanja Virsa Radio da reference den te pao 10% discount. Paanch jago ate wedding le aaj hi catering book karo 905-956-2111 905-451-9200. Serving you from 3 locations.
12: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਗਨਦੀਪ ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਐਲ ਸ਼ੇਪ

0: वीजे री सुपरवीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 90545-12600. Hello bro, kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons te baith jaiye.
2: Oh yaar, ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free wifi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
2: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600
3: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
4: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा ता हो ही नहीं
5: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
6: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
7: रेडियो आवाज
8: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200
9: याद है मैं याद है मैं
10: ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਤਿਣਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਰਹੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ

0: टेस्ट वाला, गेस्ट भी पूरे इम्प्रेस हो गए, सर्विस भी टॉप नॉच सी, टाइम पे डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग पे सब कुछ ऑर्गेनाइज, मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी, करीज रोटी राइस एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असीता हूँ हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे। ट्राई तवा किचन फॉर द बेस्ट केटरिंग इन टाउन, फ्रेश फूड, ग्रेट सर्विस एंड अनफॉरगेटेबल टेस्ट। बुक योर नेक्स्ट इवेंट नाउ, 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन, 9057901699, 9057901699।
1: 7901699 TAWA Kitchen.

0: आपको मेरी आवाज आ रही?
1: हाँ जी
0: हेलो,
1: सर, हाँ जी आ रही है।
0: आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, तो बेरी भी जो है करप्शन चार्जेस में थे, पेपर लीक वगैरह जैसे टाइप की चीजें, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में। आप जरा सोचिए, तो मैं कह रहा हूं ये ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या अमेरिका हो, यहाँ जो काम करते हैं, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, ये आप लोग जहन में क्यों नहीं बिठाते कि स्वयं ये आसमान से नहीं आए हैं? याद रख लीजिएगा बात, ये भी गलतियां करते हैं, नजर रखना चाहिए। स्क्रूटनी क्या चीज होती? दुनिया में हर जगह ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग क्यों करते हैं आप? मुझे जवाब दीजिए। आपके पास अकाउंटेंट है कंपनी का, काफी है ना, वो बता देता सर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर भी ऑडिटिंग करते क्यों? जरा सोचा करिए, क्योंकि गलतियों की ही जो है इसलाह होती, जल्दियों को करेक्शन करना पड़ता है, और जो भी बंदा है उसको स्ट्रेट अवे बोल दीजिए। और आजकल तो बहुत सख्ती हो गई, मैं आपसे बता रहा हूं कि जो काम करे उसे रखिए, निकम्मों को निकाल बाहर करिए, काम चोरों को हटाइए, क्योंकि इससे कंट्री पीछे हो जाता, घर पीछे हो जाता, पूरा नेबरहुड पीछे हो जाता, सब मिलके काम करना। मामूली कचरा उठाने वाला ले लो ब्रैम्पटन में, अगर वो टाइम पे नहीं आया तो कचरा पाइल अप हो जाता। तो मैं यही कह रहा हूँ, कल एक बंदे से बात हुई तो मैं बोला वो आपका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा मेरे दोस्त का, मैं लगा क्यों, तो बोले ब्रैम्पटन का एड्रेस है। मैंने कहा भाई क्या ब्रैम्पटन का एड्रेस होने की वजह से इंश्योरेंस के प्राइस बढ़ते? आप बोलते प्रॉपर्टी के टैक्स ज्यादा होते, तो क्या वजह है? क्या ब्रैम्पटन में मिलियन के डॉलर के लॉटरी जुटरी बोल के वहां पे इसलिए बढ़ाते आप लोग प्राइसेस? क्या हर बंदे को थोड़ी लॉटरी उठ रही ब्रैम्पटन में? जरा कुछ रियायत करिए, कुछ कंसेशन करिए।
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच,
0: आपका भी शुक्रिया जी।
1: जी जी थैंक यू, बिल्कुल जी। ते लो जी बिल्कुल, ए जड़ी अपा जड़ी उन्हां दे बच्चियां ने अथे दिल्ली दे विच है ना, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया हुआ सी शुरू, चलो वह निबड़ गया। तो जेडे धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर से उन्होंने भी अस्तीफा देता, तो बाकी वह कहें बिल जड़ा लैके आंदा पार्लीमेंट के विच, तो फिर लॉ बनूगा, जेडे बार बार पेपर जेडे लीक होंगे है। सो देख लो वो भी हूँ लॉ बना, जबकि जेडे हूँ मिनिस्टर है या जेड़े उस चीज़ नू सारा चैक कर दे या देख दिया, ये तो उन्होंने ड्यूटी है ना, ये वास्ते की वैसे बिल। तो हूँ मंगलवार को जड़ा है उन्होंने वो जड़िया शर्तां रखिया हुई सी उन्होंने इंप्लीमेंट करन दी जड़ी है तरजीह देनी है, बाकी चलो उन्होंने जड़ा सफल हो गया जड़े मूवमेंट ते अंदोलन ते बैठे हुए सीगे। पर मैनू थोड़ा जा लगता भी जिवें ना उन्होंने ये कहना चाहिए सी भी जब तक तुसी अग्गे होर एक्शन नहीं लैंदे, उत्थे तां उन्होंने कहता ना हाँ जी कर लांगे वह भी मंगलवार नू, ते पर उन्होंने उठना नहीं सी चाहिदा है ना, वो बैठे रहना चाहिए सी भी ठीक है तुसी करो मंगलवार नू शुरू करो पहला, थोड़ा जा असी देखिए। कई बार ये हुंदा कि उदों यस हो जांदी है फिर उस तों बाद मुकर जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे, फिर जिन्होंने वो मूवमेंट शुरू किया इन्नी कोशिश करके वो फिर बाद दे विचों जे करनगे, जिवें किसान अंदोलन भी ऐं होया सीगा, वो कहते हाँ जी हाँ जी मान के थोड़िया मंगा कर देनिया पूरिया ये वो, ते वो सारे उत्थों चले गए, वो तो बाद फिर दोबारा उन्होंने वो मूवमेंट नू शुरू करन दी कोशिश की, पर फिर वो गल नहीं बनती है ना, क्योंकि सरकार नूं भी ऐ हुंदा वी उदों ही तुसीं फटाफट जिहड़ा है तितर बितर कर दो इन्हां नूं जिहड़े इकट्ठे होए हुए आ। ते जिवें इत्थे वी तुसीं देख रहे होणे जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस हो रही सी है ना, ते उह जिहड़ा मिनिस्टर सीगे बैठे सीगे उह कही जा रहे सीगे है ना कि इन्हां नूं जिहड़ा अपना अभिजीत दिपके ते इक होर नाल मुंडा बैठा सी वी तुसीं इमीजिएट इफेक्ट तों कह दो वी अंदोलन खत्म है वी अपने अपने चले जाओ घरां नूं तुसीं है ना, उन्हां तो फटाफट कहाता ते उन्होंने भी कह दिता जबकि उन्होंने थोड़ा जा समा लैण दी लोड़ सीगी, बाकी तो चलो देखते हैं हुण कहिंदे आ तां करदे आ। हुण इह इंडिया दी गल सीगी पर चलो उह अंदोलन सिर्फ दिल्ली च नहीं होया जंतर मंतर ते होर भी सारे स्टेटां च जिहड़े लोग ईवन के चंडीगढ़ भी 17 सैक्टर बैठे सीगे स्टूडेंट है ना उस चीज़ नूं लैके, ते हुण अपने कैनेडा दे विच भी जिहड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैगे आ जी उन्हां दा भी वर्क परमिट खत्म हो रहा, तो वह भी हंगर स्ट्राइक ते हुण बह गए आ। 23 जुलाई तो हंगर स्ट्राइक जिहड़ी है शुरू की है उन्होंने, तो यह भी हुण इत्थे भी हुण देखदे आ भी इहनूं किन्ना क उन्हां नूं सफलता मिलती। वैसे तो चल जिहड़े स्टूडेंट आए हुए हुंदे आ पिछे मुड़ना बड़ा औखा है, पर जिवें कई बार कई कह देंदे आ भी भाई हुण उह तां पढ़न ही आए सी उह कहड़ा इत्थे पक्के हुण आए सीगे है ना, पर हुण चलो जिहड़े IRCC आ उन्होंने तो रिफ्यूज करते पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आ जिहड़े एप्लीकेशन जिहड़ियां उन्होंने सीगियां, पर

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900 इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808
1: हाय दिस इज हरप्रीत सिंह फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी

0: is a medical insurance. Number hai ga ji 416-817-6500. This is Harpreet Saini, Charter Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Choice Insurance.
1: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 इयर्स एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers, गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704.
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers.
3: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रियल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री काट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाद फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर देने. रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट राइटर रेव सिंह. रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचण अते खरीदण विच तुहाडी हेल्प कर सकती है. नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नूं फोन करो 647-740-9600. 647-740-9600 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲਟਰ ਰੈਵ ਸਿੰਘ.
4: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

0: वकार खान साहब मेरी लाइन के ऊपर आ गए हैं और वकार खान साहब आपको पता सारे नु के रॉजर्स दिया डील्स दे माहिर है और ऑथराइज रॉजर्स दे नाल बहुत लंबे अरसे तो इन्हां दे नाल टाई अप है और वकार खान साहब गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप
1: जी थैंक यू सो मच हरजीत जी सब लिसनर नो प्यार भरी सत श्री अकाल
0: जी सर सर
1: रॉजर्स जी मेरे को रॉजर्स जी बहुत ही बढ़िया प्रमोशन है असी टीवी इंटरनेट और होम फोन दे स्पेशल पैकेज प्रोवाइड कर दिया ओनली इंटरनेट दी भी स्पेशल प्रमोशन है 1500 और 2000 दी स्पीड वाले रॉजर्स इंटरनेट बहुत चीप प्राइस पर दिला देंगे
0: ठीक है
1: मेरे को रॉजर्स दी सेल फोन दे भी बहुत अमेजिंग ऑफर है कैनेडा यूएस अनलिमिटेड कॉलिंग मिले दी आईफोन और सैमसंग भी स्पेशल प्राइस पर अवेलेबल है प्लीज कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन नंबर है 6478648000 असी 18 साल से रॉजर्स दे कॉर्पोरेट इम्प्लाई हाँ थोड़ा अकाउंट और एड्रेस चेक करके बहुत बढ़िया प्रमोशन दिला देंगे नंबर अगेन 6478648000

0: गीत अब कहाँ मिलते हैं सुनने के लिए, ऐसे गीत तो बस गीतों में रह गए हैं। What a music man, I love it।
1: पथरीली राहों में
0: आ सुन लो ध्यान ना, पथरीली राहों में कहना जिद्दा ना मर्जी समा आवे, बस तेरे नाल ही जिंदगी बतीत करनी है। What a lyrics man।

0: यार बड़े सॉन्ग इधर है, सॉन्ग भी जिंदगी चाहे हुए है। कहने खाओगे जब ठोकर होंठों से चूम लूंगी, है कैसा प्यार है, कैसा एक लाइन ना मेरी सारी बिजी है। हेलो
1: हेलो जी।
0: जी सर।
1: हाँ जी सर जी, फिल्म सी मेरे हमदम मेरे दोस्त।
0: देखो जसविंदर जी मैनू ना सच्ची दस्यो, तुसी मेरे वीर हो वड्डे,
1: हाँ जी।
0: तुसी ये सर्च करके दस्या कि तो नहीं आपे लभ्या, आपे याद सी
1: नहीं
0: तुहानू।
1: नहीं मैं फिल्म देखी ही है, पहला तो पढ़ी है।
0: अच्छा तुहानू

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूरिज्म ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूरिज्म ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगी
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूरिज्म ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
2: 98 गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton.

0: आज खुश दिमाग हो गया
1: ओ ता होना ही है जो तक नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे तई लगता बन दई है
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी
1: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करने नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिदा
3: चल क्या रहे हो
1: पर ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
1: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com होर कोई सेवा
5: यारों के साथ जशन या फैमिली के साथ करना हो जशन ढाबा ऑन द फॉल्स आए टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा
6: दिल्ली वाला बटर चिकन रोगन जोश सोया चाप बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स फ्री पार्किंग विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स कॉल 905-358-0864
5: 905-358-0864 Dhaba on the Falls
7: Mitran de Junction te
6: Ho kede junction te
8: Ikka junction Brampton te
7: Raat lagiyan mehfilan are
8: ਬਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਆਓ ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਓ ਤੇ 100% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬਿਗ ਔਰ ਸਮਾਲ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਟਰੱਕ 11 AM ਟੂ 6 PM ਆਲ ਡਰਿੰਕਸ 50% ਆਫ ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-429-4040 6474294040

0: फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: घोर एंड अवनीजर के इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट।
2: मैं जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई।
3: लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
4: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए।
5: नहीं मैं मर जा उठे क्यों होने
4: GTA दा सब तो स्वादला खाना उठी ता मिलता है। सही सुनिया बई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइन इन करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड डोमिको। स्वीट महल, ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
6: रात आमे छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
7: मैं चलिया स्काईडम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी करदे ने। स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच।
6: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
7: कॉल करो 905-874-9878।